जा जा जा कुमती तभागी घर जा मेरा अगाड़ी न बस कि जोगी भई जा म मर्दिन तलायु म खरानी त घास कि गई

फेसबुक में गाइस यदि आपने भी बिजनेस टाइप में नॉन प्रॉफिट या कुछ करके यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, इंडिविजुअल में कैसे चेंज।

0: रेडियो स्थैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

मकाई लायका नी माई गाये पाने सके ना माई ले बेरे सानो फुलफुल तोरी एरा ना बाईनी छोरी सके ना माई ले बेरे सानो पारी बड़ा को तो मंसे आयो के चाइलायो माल मातो यारी रामा डलको यो जमानो के चाइलायो माल मातो अहिले को दसैँ माटी गाउँमा बसाइया गाउँ दसैँ कलकत्ता कली लोगा बासुनी देवै बाबा गाउँ दसैँ कलकत्ता भोरको

बिजुली बाती शैलंगे फेम जाती सबाए जानलाई नमस्कार। दाम पैसा गने मैले यति भने सबाए जानलाई नमस्कार। भतैरा पाको रुदु होइन गुदु यति हुन त पगुमान।

हरि हरि सुनियो ना तारी ढाके लो ना त्यादार ले माया को चिठी सिरान मारा की बसी रहे छो सादार ले लारी लारी।

नमस्कार, रेडियो शैलव सामुदायिक एफएम बैनवी थोप्लो 7 MHz म पति प्रसाद साहबबाट आज विक्रम सम्बत 2083 साल शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सन 2026 जुन 23 तारीख आषाढ 9 गते मंगलबार 9वीं तिथि अब स्तुति गरौं। आयु द्रोण कुमार कैसरिया हो साक्षेण कल्पय भरी।

राजा नहुष काय सारे दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जय नई परे का घरे मन राखुन सबले दुर्योधन सम

धर्म कुमार कैसर्या श्री ब्रह्म ज्ञान याने विदुर कैसर्य ज्ञान हवश सुजन मनुन बढ़ाले पने कृति उज्ज्वल सुत सहित का।

0: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: नमस्कार, मेरो बैतेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बस्ने म झटक प्रसाद तिमल सिन्हा। म दुख केही दुई चारवटा भजन यसो गाउँ भनेर आएको यहाँसम्म। नमस्कार हजुर। जय गाडे सा जय गाडे सा देवा, जय गाडे सा जय गाडे सा जय गाडे सा देवा, गौरी माता पार्वती पिता महादेव। हरि हरि सदाई भारी भक्ति गरौ है, हरि हरि सदाई भारी भक्ति गरौ है, यो लोक दुख छोड़ी जन्म सुधारौ है। आरती का जय, राधे राम जी का जय, आरती का जय, राधे राम जी का जय, आरती गरौ प्रभु आती मा तुमारे, यो लोको दुख छोड़ी जन्म सुधारे, यो लोको दुख छोड़ी जन्म सुधारे। जय गणेशा जय गणेशा जय गणेशा देव, गौरी माता पार्वती पिता महादेव। हरि हरि सदै भारी भक्ति गरौ है, हरि हरि हरि हरि सदै भारी भक्ति गरौ है, श्री कृष्ण बलराम सुन्दर वृन्दावन, छोडेर नजाऊ होइ रुन्छ नि मेरो मन, श्री कृष्ण बलराम सुन्दर वृन्दावन,

जपौ हरिलाई कृष्ण जपौ हरिलाई, एक दिन होइन दुई दिन होइन सधैँ भरिलाई, एक दिन होइन दुई दिन होइन सधैँ भरिलाई।